0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो तालचेर
2: अहिले बिहानको 9 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: Sili
1: Nyangi Goyla Yeno
0: Kanung Rose Mamhegini
2: मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिने मामु
1: यंगी रिमथिम दिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयासकी
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
1: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
0: नाको रसे मुन्न जाटनी पट्ट लाफा को के रसे की मुझनी है।

0: This is Radio Dwarbarahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Tanchin.
2: Aile, Diusoko Ek Bajo.
3: टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेलपोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।
4: Gandalf, stand by.
0: Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो तालचेर अहिले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

他这个啊，这名字沙老师意思了对吗？我这个是前历史啊，说的October 6 तारीख थोड़ी बारे highlights में आप सुन रहे हो।